दुख तह ते नसी तपत माहे ठंड वरताई अनंत पिया दुख नठे पाई जन मरण कमेटिया देसी साधु के पूर्ण उपदेसे पाओ चुका निरपाओ हो बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे जिस का सा तिन कृपा धारी साध संग जप नाम रारी थित पाई चुके ब्रह्म गवन सुन नानक हर हर जसरावन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला धार जन सगली मोही अपने चरित प्रभाव बनाए अपने कीमत आपे पाए हर बिंदु जा नाही कोई सर्व निरंतर को सोए ओत पोतर व्यारूप रंग भय प्रगा साध गै संग रच रचना अपने कल तारी अनक बार नानक बलिहारी सलोक साथ न चल बिन भजन विखिया सगली शार हर हर नाम कमावना नानक हो तन सार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर ओ पाव सब मीत बसारु चरण कम दृद में उतारु करण कारण सो प्रभु सुमरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वथ हिव धन संजो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व योग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंड उठताव है सो तन हर सेवा ते पाव है जिस सुख को नित बछ मीत सो सुख साधु संग प्रीत जय शोभा को करे भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटाय हर अवखद लाए सर्व निदान मह हर नाम निदान जब नानक दरगह प्रवान मन पर बुद्ध हर के नाय दे

तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व पै कुंठ मुक्त मोख पाए, एक निम करके गुण गाए, अनक राज भोग वडियाई, हर के नाम की कथा मन पाई। बहु भोजन का पर संगीत, रसना जपदी हर हर नीत, भली सुकरनी शोभा दरवंत, हृदय बसे पूर्ण।

पैदी जब आकार कृष्ण दृष्टि तब आप पुन तब कहते हो ता जब धारी अपन सुन सुमात तब बैर विरोध किस संग कमात जब

सात गुणिदान बिनत अपार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूर रहे दयाल सब उपर होवत कृपाल अपने करताब जन आप अंतर जामी रहे व्याप प्रतपाल जियन भोपांत जो जुर चुत सहत आत जिस भावै तिस लय मिलाई भगत करै हर के गुण गाए मन अंदर विश्वास कर मानिया करन हार नानक एक जानिया जन लग हर कै नाहि तिसकी आसन बिरथी जाए सेवक को सेवा बनियाई हुकम बूझ परम पद पाई

मानव सुख पाऊ। वेद प्राण सिमरत मैं देख, ससिय सुन खेत्र में एक, वाणी प्रभु की सबको बोले, आप अडोल न कबू डोले, सर्व कला कर खिले खेल, मोल न पाइये गुण है अमोल, सर्व ज्योत में जागी ज्योत, धार रहे स्वामी ओत पोत, गुरु प्रसाद परम का नास, नानक तिन मैं है हो विश्वास, संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म, संत जना सुन है शुभ वचन, सर्व व्यापी राम संग्रचन, जन जाता दिसकी रहत, सत वचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख माने, करन करावन हार प्रभ जने, अंतर बसे बाहर पियो, नानक दर्शन दीक्षा मोही, आप सत किया सब सत, तिस प्राप्त सगलियो तो पत, तिस भावै।

सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विसराम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सुवारी साध संगत जीओ, हुण समा होया शामां दे रह रसा जी दा, आहो बाणी सरवण करदे आ जी हुईआं भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धां पुरखा किया वड्याईया। तुद विण सिद्धि किने ना पाईया, कर्म मिलै नाही ठाक रहाईया। आखण वाला क्या वेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा।

रहाओ। ना हौ जति सति नहीं पड़या, मूरख मुगधा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरया। आशा महला पंजवा। भई परापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दय मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दय करिय सब बैरन को आज संगरिय पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊ जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दय मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जो करे हो रक्षा राख लेहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंध दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता।

देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, घट घट के पट पट की जान। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड़ उचारत भेदा, जाको भेव ना पावत बेदा। ताको कर पाहना।

कर काची न तनह पैव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लख

जसे तज कीनी उत पूज खान बहुर रच दिनी। कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पहे ओ।

अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दोष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण कहता। जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट न है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला।

पाउड़ी। जिथै तू समर्थ जिथै कोए नाहे, ओथै तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड़ जाहे, पौ जल बिखम असगा हो गुर शब्दी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सहनो कृपाल संभाले साहे साहे, बिरथा कोई ना जाए जे आवै तुद आहे। सलूक महला पंजवा। अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ। सतगुर से तीरतिया दरगह पाई ठाओ, कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वात दे। जग मह उत्तम काढ़ी है विरले के महला पंजवां।

जिस से मरत सुख होए सगले दुख जाहे। तिस साहिब की टेक नानक मन माहे, जिस से मरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी।

सत्संग जी बोलो जी। वाहेगुरु वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाज भगवती पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समरकाए गुरु नानक लई त्याए व्यंकट गुरते अमरदास रामदास से सहाय अर्जन हर गोविंद नु सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरया कारण उन्हें दयावै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पाची ने पुत्रात्मक रूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पार दर दर के खालसा से बोलो जी। वाहे गुरु गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हटिया जपिया जपिया जना नाम जपिया बन चख्या दे चलाई ते वाहे देख डेढ़ कीता तेना प्यार त्यार नहीं कमाई का त्यंतर के बोलो जी। वाहे गुरु जन्ना सिंह सिंगणिया धर्म हे सी दिते बंद बन कटवाए कोपरिया लवाइया चरखड़िया ले चढ़े आड़ना चलाए गए गुरुद्वारे सेवा कुर्बानियां कीतिया धर्म नहीं आ रहा से किसी तरीके संस्था सत्संग निभाया तिना नहीं कमाई का त्यंतर के बोलो जी। वाहे गुरु पंजा तख्तां सबद गुरुद्वारा का ध्यान करके बोलो जी। वाहे गुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेता वै चित आमण कासत का सर्व सुख होवै जहां जहां गुरु खालसा साहब तां रचिया आए देख देख की फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। वाहे गुरु सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब के दर्शन इशनान चौकिया चंडे बुंगे जुग जुग टल धर्म का जयकार बोलो जी। वाहे गुरु सिखा दा मन नीवा मत उचे मत पद के राखे आप वाहे गुरु गुरु जी बनवाज पंथ सदा सहाई दता जो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जो पंथ नछोड़ा गया है उन्होंने खुले दर्शन की दार से सेवा समाज का दान अपने खालसा जी ने बख्शो हे नोटिया की ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ने तार पिता जी हो आपके चरण कमलों अरदास पिता जी आज बख्शे तार जी हो आपके चरण पितर गुरबाणी सुखमनी साहब के पाठ संगति रूप में तार पिता जी बख्शिश करो उपरंत आप जी दरकर सेवादार जगबीर सिंह नत बीबी पैम कौर नत अपनी बच्ची श्रीनाथ जन्मदिन की खुशी तार जी जिन्हों ने आपकी पितर गुरबाणी सुखमनी साहब के पाठ करवाए ने उतार कृपा करो बख्शी करो दोवे सुखमनी साहब के पाठ करते हैं उतार जी परिवार तो सेवा करते हैं हुईया भुला चुका जी माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सचखंड प्रभाव करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदी कृपा करो अगो तो शुद्ध पितर बाणी चाणी बाल बुद्धि बख्शिश करो गुरु गरीब नवाज बख्शिश करो गरीब नवाज जी परिवार वालों आप जी पितर माले आदर अंगीकार करो सेवकों के लोग पढ़ते टको संगत वास्ते पुत्र कलाम से देखा तेरे हाथ उतार आप जी भोग लाओ शीर प्रसाद साहब संघ की रसना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जा पितर नाम जपे बख्शी करो दतार दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देव लई रखा बख्शी करो जी गुरु की विवाह कृपा करो परिवार वालों लंगर की टुट सेवारियां प्रवान करनी विवाह बख्शिश करो परिवार वालों बेअंत मेहनत माए सेवा चरना प्रवान करो सेवकों ने कमाइया सफल करो कौरवा जी वादे चल कामयाब बख्शिया चरना दरवाजी बनाओ दतार कृपा करो जी बख्शिश कर लगी विवाह जी बच्ची सरीना तंदुरुस्ती बख्शो लम्मी आयु बख्शो माता पिता धर्मदेश कौम दी आज्ञा कार बख्शी करने दतार बच्चे ने गुरसिखी दाल बख्शी करके रुचि विद्या दाल बख्शो सोनी जमा बख्शी बख्शी करने दतार बच्चे ने सारी जिंदगी वास्ते तरक्या बख्शी करने की बात करो मेहनत दतार बख्शे करो सत्य पातशाह जी सारे नत परिवार तंदुरुस्ती सुख शांति चाटी कला करनी शुभकामना पूर्ण कर दतार परिवार में एकता सुभाग प्यार बख्शे करके सत लोग दाल बख्शो परिवार में सदा चरना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शे करने दतार कृपा करो परिवार दिया सदा शुभ कामना समाता पूरी कर सदा अपने चरण सेवा की दात बख्श का निर्भाल करो दाते इलाज बंद रखो परिवार की हर प्रकार की रक्षा बख्श निर्भाल करो बख्श करो परिवार दिया सारिया शुभकामनावान अरसा मुरादा पूरी करनिया अरदासा चरणा प्रवान करने तैयार कृपा करो दातियों की आप इलाज बंद रखो जी गुरु की निवाज बख्शिश करो अमृत वेद लैके दरते हैं साफ संगत जी दर प्रवान करो घड़िया खिलाओ संगत दर से तेरे फुल बेटा बनाने शुभकामना पूर्ण करो जी गुरु जी राम जी कृपा करो आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टहरिया सिंघा सिंगड़िया तंदुरुस्ती बख्शो चाटी गला बख्शो अरे सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भावना बख्शी की बालता करो दार कृपा करो गुरु राज जी अर्ज दर कर सेवादार काका रोहित बच्ची करजोत कौर पातशाह जी
व्याधि त्रिक निश्चित होंगी खुशी में प्रभार वालों गिरिवास सेवा हरि आचरण प्रवान करो भक्त करो तथा सेव का दे का स्वागत है धन्यवाद बनाओ अपने सेवक दे आपला पत्र करो तथा सेव का दे सारे कार्य निर्विघ्नता से पूर्ण करने के लिए कृपा करो अपने सेवक दे आपला पत्र रखो जी विराज करते पाशाह जी हो काका शान सैनी दे जन्म दिन की खुशी के परिवार वालों एक ही डालर भेटा कि प्रवान करो हर बख्श कर दें काका शान सैनी तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो गुरसिखी नाम दाल बच्चे उची विद्या की दाल बख्शो सारे परिवार तंदुरुस्त हो चांदी चांदी कला करो कमाइया सबल करो दर्शन की आवलाद रखो जी गुरु जी महाराज कृपा करो दता मेरे हाल कर दूध रख बैठी संगत हाल दिन प्रवान करो घड़ियां लेके लाओ संगत पाशाह जी आपने बख्शिश की उन्हें बख्शे उत्साह बख्शे ने संगत आदि चरण धनबाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद ऑनलाइन गुरु घर सेवा सिंह संगत माया पेटा कर चरण प्रवान करो बच्चे सब कमाइया सबल करो घर च वादता सब संगत शुभकामना सब पूरी करो जी सार बख्शे करो मेरा ने कराओ गिरिवाज विण बोलिया सब कुछ आंदा किस आगे की तार मेरा कराओ सेवा प्रवान करो माही बख्शो पेतर को नामी बख्श कर बरंत अज के समय अमृता वास्ते आगे बख्शो गिरिवाज से जोर चे पाशाह जी सेवा हो रही उन्होंने चे पाशाह जी सेवा प्रवान करनी अज सारे कार्य पूर्ण करने से ही प्यारे मेरे दिल में आपका नाम दिता वा नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दोहरा आग्या भाई अकाल के तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे जो प्रभु

सूत्र तुम ते होय सु आज्ञाकारी तुमरे गत मित तुम्ही जान नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी सतनाम श्री वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदासे हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई जिस डिठे सबद हजाय तेग बहादुर सिमरिया घर नौन दयावे ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब महाराज जी सब थाई हुए सहाय। दसम पातशाहियां दी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहान साहबजादे चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख केंद्रित कीता तिना प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिकणियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाईयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया ना चराए गुरुद्वारा की सेवा कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया सिक्खी के सत्संग निभाई तिना की कमाई का ध्यान धरके खालसा जी साहब बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारा का ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेताव चेतावन का सदका सर्व सुख जहां जहां खालसा जी साहिब तह तह रशरिया देखते फतेह बिरत की पाए पंथ की जी श्री साहब जी साहे खालसा जी के बोल भले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केश दान रह दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी के दर्शन शना चौकिया झंडे बुंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उचे मत पत करा काप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ ते सदा सहाय जतार जी श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारा गुरुधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणियों के मान नताणियों के ताण न्योटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ दोए कर जोड़ करूं अरदास तुद भावे ता आने रास महाराज जी आप जी दे चरणा च अरदास बेनती आप जी दी महान बख्शिश होई पावन हजूरी अंदर रात्रि दे दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना विच आरती शब्द कीर्तन चल रही लड़ी वार गुर शब्द दियां विचारां उपरंत अमृत बाणी दे शब्द कीर्तन होए महाराज जी समुची सेवा निभाउंदिआं बाणी पढ़दिआं कीर्तन करदिआं विचारां करदिआं आप जी दी सेवा संभाल करदिआं होईआं बेअंत भुल्लां बख्श देणियां जी अगे वास्ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बल उत्तम बख्शिश करना बाणी दा पावईआं संगतां दे हिरदिआं ते वसाउणा जी अजा संगतां दी हार दर प्रवान करनी सभना दीआं तिल फुल पेटावां दर प्रवान करनीआं सभना नूं दरों करो नामदान गुरसिक्खी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी दुखां कलेशां रोगां दा नाश करना जी सुखां दा प्रकाश करना देशां विदेशां विच रख्या बख्शिश करनी महाराज जी बेअंत संगतां दूर दराडे बैठे घरां विच लाइव गुरबाणी दे जाप सरवंगार करनीआं हन जाप सरवण करदिआं आप जी का धनवाद करद बिंत माया गुरु घर वास्ते गुरु घर के सेवादार सिंह वास्ते ऑनलाइन भेटा की महाराज जी सारी संगत की हारी दर प्रवान करनी सभना की माया सफली करनी किरत कमाईया बरकत पाणी श्रद्धा भावना मासूम पूर्ण करनी चढ़ती कला बख्शिश करनी जी आप दर घर के सेवक भाई प्रीत सिंह गरेवाल समूह परिवार की सेहत तंदुरुस्ती चढ़ती कला की अरदास बेनती करद गुरु घर वास्ते $1,000 माया भेटा कर दें कृपा करनी महाराज जी सेव परिवारों की भेटा दर प्रवान करनी समूह गरेवाल परिवार को देर रूता तंदुरुस्तियां प्रदान करनिया चढ़दी कला बख्शिश करनी जी आप जी दर घर दे सेव सुरगवासी सरदार अवतार सिंह की मिठी याद में परिवार वालों आप जी के चरणों अरदास बेनती कृपा करनी महाराज जी मिठी विछड़ी आत्मा सदीवी काल वास्ते पवित्र चरणा कवला विच निवास बख्शिश करना परिवार को चढ़दी कला बख्शिश करनी दर घर के सेवक बच्ची जस नूर कौर के जन्मदिन की खुशी में परिवार वालों धनवाद करते अरदास बेनती करते कृपा करनी बच्ची के सिर ते मेहर पर हथ रखना लंबी आयु विद्या के दान बख्श के निहाल करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करो महाराज जी सिख पंथ विच एकता प्रेम भावना की दात बख्शिश करनी जी खालसा पंथ नूं चढ़दी कला बख्शिश करनी जी इस वेले दीवाना की संपूर्णता होई
ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੀ ਜੋ

श्री वाहे गुरु साहिब जीओ ज्ञान ध्यान किच कर्म न जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लावो

सेवा करे सो चाकर होए, जल थल महियल रव रहया सोए। हम नहीं तंगे बुरा नहीं कोए,

जाप अष्टपदी जब अकार एक आशना दृष्टि था पाप पुन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कुमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरक सोग कह के सह व्यापत जब आपन आप हो आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम आपन खेल आप वरती जा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत कहो किस कहो गनी जब एक हर आगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुबाए तब शिव सकत कहो कि तठाए जब आपे आप अपनी ज्योत तरह तब कवन निडर कवन का तो डर आपन चले तो आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल छिद्र लगत कहो कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किस है पूख कवन त्रिपताव करन करावन करने हार नानक करते का नाही सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कला आपे प्रवीण तह वेद कतेव कहां को चीन जब अपन आप उरता रहे तौ सगन अप सगन कहा बिचार है जय अपन ऊच अपन आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कही है चेरा

अक्री लिखण बोलण बाण क्रसे संजोग उकाण जिने लिखे ति सिरनाहि जि फरमाए तिव ति पाए जीता कीता तिता नाओ विण नावै नाहि कोताओ कुदरत कवन कहा विचारु वारे न जावै एक वार जो तुद पावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हथ पैर तंदे पानी धोतै तो उतर सुखे मूत पलीती कपड़ हुए दे साबून लइए उतोए भरिए मत पापा कै संग उतो पैनावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाही कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीजा पे ही खाहो नानक हुक्मी आवो जाहो तीर्थ तप दया दत दान जे को पावै तिलका मान सुनया मनया मन कीता भाओ अंतरगा तीर्थ मलनाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आत बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिर उत्ती माहो कवन जित हुआ आकार वे न पाईया पंडती जे हुआ लिख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लिखण लिख कुरान थित वार ना जोगी जाने रुत माहो न कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई किव करे आखा किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाना वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा कहू वै नानक जी को आपौ जाणै अगै गया न सोहै पाताल पाताल लख आगास आगास ऊड़ कूड़क भाल थके वेद कह निकवात सहस अठारह कहन कतिबा असलू एक तात लिखा हुए ता लिखी है लिखे हुए विनाशु नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप सालाही सालाही ती सुरत न पाईया नदियां तै वाह पवह समुद न जानी है समुद सह सुल्तान गिरहा सेती माल धन कीड़ी तुल न हुवनी जी तिस मनो न विसरह अंत न सिफती कह नयंत अंत न करने दे नयंत अंत न वेखण सुनन नांत अंत न जापै क्या मनमंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे इहो अंत न जाने कोए बहुता कही है बहुता हुए वड्डा साहिब वड्डिया वड्डा साहिब ऊंचा थाऊ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा हुए कोए तिस ऊंचे को जाने सोए जीवड़ाप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया न जाए वड्डा दाता तिल न तमाए किते मंगह जो दपार कितिया गणत नहीं विचार किते खप टुटह बेकार किते लै लै मुकर पाहे किते मूरख खाही खाहे कित्या दुख भूख सदमार ए पैदा तेरी दातार बंद कलासी भाण होए हो राख न सकै कोए जे को खाए के आखण पाए ओ जाने जितिया मुखाए आपे जाने आपे दे आखै सेबे के जिसनु बख्शे शिवसा लाह नानक पातशाही पातशाह अमूल गुण अमूल वापार अमूल वापारी अमूल भंडार अमूला वह मुल लै जाहे अमूल पाए अमूला सुमाहे अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवान अमूल बख्शीश अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान अमूलो मुला क्या न जाए आख आख रहे लिवलाए आखै वेद पाठ पुराण आखै पढ़े करै वख्यान आखै वरमे आखै इंद आखै गोपी तै गोविंद आखै ईश्वर आखै सिद्ध आखै किते किते बुद्ध आखै दानव आखै देव आखै सुर नर मुन जन सेव किते आखै आखण पाहे किते कहै कहै उठ उठ जाहे ते किते होर करे ताक न सकै केई के जीवड़ पावै तेवड़ होए नानक जाने सचा सोए जी को आखै बोल विगाड़ ता लिखिए सिर गावार गावार सो दर के हा सो कर के हा जित वै सर्व संभाले वाजे नाद अनेक संका किते वावन हारे
ਕੀਤੀ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀ ਇਨ ਕੀਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵੈ ਤੁਨੂੰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵੈ।

हैं, धंध हैं, बंध हैं, अभगत हैं, विरक्त हैं, अनाथ हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनित हैं, अलिख हैं, अधिक हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटा हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगम हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट छंत्व प्रसाद सर्वंग हंता, सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता, सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राण, सर्वंग त्राण, सर्वंग कर्मंग, सर्वंग धर्मंग, सर्वंग जुगता, सर्वंग मुक्ता रसावल छंत्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामी निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं सरी कह अमितो अमी कह सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंत्व प्रसाद कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुस्नल चिराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी देहांद है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुस्नल जमाल है गनीमुल के राज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकान है हिरासुल फिकान है कलंकं प्रनाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनी महर जायक रही महर समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकंग प्रनाश है बहसुल निवास है कि सर्वल गवन है हमीसुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परंग परमीश है समस्तुल अधीश है आदेशुल अलेख है हमीशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विपूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अपंग है मद पार चंत्व प्रसाद मुनमन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हर नर पर पंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंडो अनुभव अनास मुनमन प्रकाश गुणगन प्रणाम जलथल मुदाम अंशिज अंग आसन अपंग उपमा पार गतमित उदार जलथल अमंड दिशविश अपंड जलथल महंत दिशविश बेअंत अन पवना त्रितर तुरास आजान बाहु एकैस दाहु ओंकारात कथनीय नाद खलखंड के आल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनचिज गातु अजिज न बातु अन चंज गातु अन रंज बातु अन टुट पंडारु अंडट अपार आडीट धर्म अत टीठ कर्म अनब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंतु प्रसाद करुणालय है अरकालय है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है पर ते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता अमृत है अमृतामृत है करुणाकृत है कृताकृत है तरणी त्रित है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नरनायक है कलकायक है विश्वंबर है कुरुणालय है निपनायक है सर्पायक है पवपंजन है यरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग प्रया छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र।

नमो रासं तामसं सांतरूपे नमो परम तत्तं अतत्तं स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रिय अनादंग विपूते कलंकार रूपे अलंकार लंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अचरी चंद अजय अलय अभय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे प्रमाथे अजूनी अमूनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयाचंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग विपूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विपूते सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी करी मुलकु निंदा समस्तुल निवासी अजाय विपूते गजाय गनिमे हरियं करियं करिमुल रहिमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं वेपूते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं वेपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सुवैये श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख फिरयो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुदा दिख संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूपो तंग सुरंग सुवारे कूट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारे भारी बुझान के भूप भली बिद न्यावत शीस न जात विचारे एते भय तु कहा पै भूप तंत को नंग ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पद श्री भगवान भजे बिने अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक विशेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सब सुविचार हजार के दिख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सिपाह दुरंत दबाह सुसा सुनांदुर जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरिन मरूर मुवासन मातिम तंगन मान मलेंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर पार बड़े बरियार अभचार है सार की तार पछैया तोरत देश मलिंद मुवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक नेक सो एक दिवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन परतापन बाढ़ जैद धुन पापन के बहुपुंज खपेंगे साध समूह पर सन फिर जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजिंद्र निराधप जोंतर लोक को राज करेंगे कोट स्नान गजा दिक दान अनेक सुअंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के प्रस हैं पग ते नर फेर न देह तरेंगे कहां भयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो
नाथ फिरियोलिए सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बखियान सु बैठ कै ऐसे ही ऐसे सुबह सुबितायो साच कहूं सुन लेहु सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा में काहू पछाकू शीश निवायो कूब तान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायु

सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम काबू, आप हाथ दे मुहे बचाबू। सुखी बसे मोरू परिवारा, सेवक सिख सबे करतारा। मूर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आसंगरिए। पूर्ण हुए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे वरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हु जो सदा हमारी पच्छा, श्री अस तुझ जो करे हो रक्षा। राख लिहो मुहि रखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दै जचन उपजायो। आदंतिक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पहचानत। चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पहचाने, कट कट के पट पट की जाने। जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा तर्त तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप अपनी बूझू चार। तुम सब ही तेरत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्भकार निर्लंब, आद नील अनाद शंभु। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कृपा हन अनुमानत, महा मूड कच भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह भेव। आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, के विसजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज कान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भयो संकरे कैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुझ तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्टन जाहि निहरि हो, ताके ताप तनक मैं हरि हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब हुई, दुष्ट चाह छव सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारु कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे लिहो उबारी। सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट दुख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल विक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखिन को छह करता।
श्री अस्तो जजा भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वांछित फल पावै सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल सुनै गुंग जो याहि सुरस न पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकड़ना तिन नर के रह हो जो याकि एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहसपनी जय अर्ध सहस पुन तीन कही जय आद्रुसुदी अष्टमी रवारा तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा सोइया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कुआंक तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब भेद कह हम एक न जान्यो श्री सपान कृपा तुमरी कर मैं न कहू सब तुहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयु तुहारू द्वार

मैं पाया। हे मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा कर सब सुवारना, सबना गल्ला सुमरत सुवामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे, घर ता तेरे सब किच है। जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, ना मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजी शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दियां एह वडे आईया। कह नानक सुनहु संतहु शब्द धरहु प्यारु, साचा नाम मेरा आधारु वाजे पंच सब तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे। कला जित कर धारिया पंच दूत दुवस कीते, काल कंटक मारिया तुर करम पाया, तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे। कह नानक तै सुख हुआ तित घर अनहद वाजे, सच लिवै बिन देह निमानी, देह निमानी लिवै बाज हो क्या करे बेचारिया। तुद बाज समरथ कोई नाही कृपा कर बनवारिया, एस नो होर थाउ नाही शब्द लाग सुवारिया। कह नानक लिवै बाज हो क्या करे बेचारिया, आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया। जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विकटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदरो जिन का मुह तुटा तिन का सब सच्चा सुवारिया। कह नानक हो आनंद है आनंद गुरु ते जानिया, बाबा जिस तू दे सोई जन पावे, पावे ता सो जन दे जिसनु, होर क्या करे बेचारिया। एक भरम भूले फिर है दह दिशिक नाम लाग सुवारिया, गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा भावे। कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे, आवो संत प्यारे हो कत की करह कहानी, करह कहानी कत केरी कित द्वारे पाईए। तन मन धन सब सौप गुर को हुक्म मन्ने पाईए, हुक्म मन्ने हो गुरु के रागा वो सच्ची बाणी। कह नानक सुनहु संतहु कथिहु अकथ कहानिये, मन चंचला चतुराई किनै न पाया, चतुराई न पाया किनै, तू सुन मन मेरिया। एह माया मोहनी जिनेत भरम फुलाया, माया ता मोहनी तिनै कीती जिन ठगौली पाईया। कुर्बान कीता तिसै विटहु जिन मुह मीठा लाया, कह नानक मन चंचल चतुराई किनै न पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाली, ए कुटम तूजे देखदा चलै नाही तेरे नाले, साथ तेरे चलै नाही तिस नाल क्यों चितलाई है। ऐसा कमूले न कीचै जितंत पछोताई, सतगुरु का उपदेश सुन तू हो वह तेरे नाले। कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाली,

हर मन न वसाया गुरु प्रसादी, हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया, कह नानक शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से चित लाया। हे नित्र हो मेरे हो हर तुम मह ज्योत तरी, हर बिनवर न देखो कोई, हर बिनवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया इहो वि संसार तुम देख दे, हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर इक है, हर बिनवर न कोई, कह नानक नेत्र अंध से।

चलायो। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो, गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरां की जो प्रभ को मिल बूच है खोज शब्द में।

मेरा दुख सुख तुझ ही पासु। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेली। राखु राखनहार दयाला, नानक घर के गुले। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। राग सूही अष्टपदिया, महला चौथा घर दूजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद कोई आन मिलावे, मेरा प्रीतम प्यारा। हों तिस पह आप विचाई, दर्शन हर

हारताओ दर्शन कहताई, चखड़ चागी मिह वरसै पी गुर देखण जाई। समुंद सागर हुवे बहु खारा, गुर सिख लंग गुर पह जाई। ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाई। ज्यों धरती सोभ करे जल बरसै, त्यों सिख

वाहिगुरु जी की फतेह। राग सूही अष्टपदिया घर चौथा महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई आन मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा हौ तिस पह आप विचाई। दर्शन हर देखन कहताई कृपा करहै ता सतगुर मिल है हर हर नाम त्याई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जी आप तंता योग हो जो अमृत वेले निता प्रति गुरु दरबार दी हाजरी भरदे हो। सतगुरु जी ने बख्शिश कीती है पावन दीवानां दी संपूर्णता ते अज दे इलाही दरगाही श्री मुखवा बख्शिश कीते हन जो सूही राग अंदर धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दी अमृत रसना तो उच्चारण कीते गए हन। सतगुरु दतार पिता जी के पावन अंग 757 58 उपर सुभायमान हन। गुरदेव जी ने बख्शिश रहमत कीती है कि जिस जिग्यासु जिस भगत दे हिरदे विच परमात्मा दे दर्शना दी तांग है उस दर्शना दे मिलाप लई परमेश्वर दे मिलाप दे लई उस सज्जन दी ढूंढ करदा है भाल करदा है जो उसनू मिला दे उहदे उत्ते अपना आपा वारण दी वार्ता कीती है कि उहदे दर दा मैं गुलाम बन जावां सेवक बन जावां अपना आपा भी वेच दियां जे कोई मैनू गुरु दे प्रभु दे दर कर दी सोए दे दे दर्शना दी कोई रहमत कर दे मैं उहदे लई अपना आपा मिटा दियां। सतगुरु जी कृपा करन सभना नूं दरों करो नामदान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजन। बेनती है कि 11 मई तो लैके 17 मई तक साडे पास सत्कारयोग भाई साहिब भाई पिंदरपाल सिंह जी वह पहुंच रहे ने एक हफ्ते वास्ते गुरमत विचारां दी सांझ पाउणगे। रोज शाम नूं 7:30 तों 8:30 कथा विचार होएगी। ऐतवार दे दोपहर दे दीवान होणगे। सो आप जी दे चरणां विच बेनती है कि आप जी ने वध चढ़ के हाजरियां भर के लाही प्राप्त करने हन जी। आओ प्यार सहित अमृत बाणी दा कीर्तन भाई साहिब भाई सुरजीत सिंह जी रसीला हजूरी रागी गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली वाले तिना पासों अमृत बाणी दा कीर्तन सरवण करिए जी। भुला चुका दी खिमा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

मन इक्को सच्चा हुक्म पछाणी, सहज संतोख सदा तृप्तासी, अनद खसम कै भाणे जियो, हथी दित्ती प्रभ देवनहारे, जन्म मरण रो

सो सच मंदिर जित सच त्याई, सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है, सा धरत सुहावी जित वसह हर जन, सच्चे नाम विटह कुर्बानो जियो, सच वडाई कीम न पाई, कुदरत कर्म न कहना जाई, त्याए त्याए जीवह जन तेरे, सच

रैन सुहावड़ी दिन सुसुहेला, जप अमृत नाम संत संग मेला, घड़ी मूरत सिमरत पल वंज है, जीवन सफल।

भगती प्रगटाया, संत संग मिल हर हर जपया, बिन से आलस रूगा जियो, जा कै गृह नव निध हर पाई।

जिसके मन लागी गुण गावे अन दिन नित जागी बाह पकड़ तिस स्वामी मिले जिसके मस्तक लहना चरण कमल भगता मन बूठे विन परमेश्वर सगले मूठे संत जना की धूड़ नित बांछ है नाम सच्चे का गहना उठत बैठत हर हर गाई है जिस सिमरत वर निह चल पाई है।

साकत कूड़े सच न पावे, दुबदा बाधा आवै जावै, लिखिया लेख न मिटे कोई, गुरमुख मुक्त

गुरमुख बूझै अकथ कहावै, सच्चे ठाकुर साचो भावै, नानक सच कह बेनंती, सच मिलै गुण गावणिया। माझ महला तीजा, घर पहला

जिसे आप भुलाए सो किथे हथ पाए, पूर्व लिखिया सो मिटना ना जाए। जिन सतगुर मिलिया से वडभागी, पूरे कर्म मिलावणिया। पेयड़ धन अन दिन सुती,

ताते जो हर पाए मेरे प्रभ मेले मेल मिलाए सदा सदा सच्चे तेरी शरणाई तू आपे सच बुझावणिया।

शब्द हर रंग चढ़ाए, मन तन रत्ता रसना रंग चलूली, भै पाए रंग चढ़ावनिया, हवारी जी वारी निरभव मन वसावनिया, गुर कृपा ते हर निरभव त्याया, बिख भौजल शब्द तरावनिया रहाउ। मन मुख मुगत करह चतुराई, नाता धोता थाए न पाई, जेहा आया तेहा जासी, कर अवगण पछो तावनिया। मन मुख अंधे किछु न सूझ है, मरन लिखाए आए नहीं बुझ है, मन मुख

रसना हर रस राती रंग लाई, मन तन मोहिया सहज सुभाय, सहजे प्रीतम प्यारा पाया, सहजे सहज मिला बनिया, जिसे अंदर रंग सोई गुण गावे, गुर कै शब्द सह

महाराज जी गुरमी चाह रही है ते उस तो पहला सारे एक बारी कह दियो दो दो खुशियां नाले बंदगी दी कीर्तन दी नाले व्याह दियां जेड़ा नाम है ना कहिंदे सद खुशियां जप कीर्तन हरना ये सदा खुशी बरकरार रखना एक दो दिन वास्ते नहीं इस करके कह दियो सारे सब दी हाँ।

जी की फतेह। बेनती है सुभाग जोड़ी नू कि हुण लावां दा पाठ प्रारंभ होएगा। आप दोवें वडभागे हो जो अपने जीवन नू ग्रिस्त धर्म नू प्रारंभ करन तो पहला गुरु महाराज दे हजूर आ करके सतगुरु जी का उपदेश ग्रहण करने वास्ते एकत्र होए हो। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने जो सूही राग विच चार लावां सिख नू बख्शिश कीतियां हन, जिथे इन्हां लावां नू सुन के विचार के असी अपने ग्रिस्त धर्म विच प्रवेश करदे हां, उत्थे इह लावां सानू आत्मक मार्ग ते भी सहाई हुंदियां ने। जिवें शारीरिक मिलन हुंदा है, उसे तरह आत्मक मेल परमात्मा दे मेल दा भी इह उत्तम स्रोत है। सो गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने जो साडे ते बख्शिश कीती है, चार लावां सानू बख्शिश कीतियां ने। हर सिख ते सिखणी जदों व्याहुण दे योग हुंदा है, वह गुरु महाराज के हजूर आकर के लावां का पाठ सरवण करता है। संगत की हजूरी विच, गुरु की हजूरी विच एक दूजे के होण दा असी प्रण करते हाँ। सो आप सुभागी हो, वडभागी हो जो गुरु साहब सच्चे पातशाह जी के हजूर तुहानू बैठण का सुभाग प्राप्त होया है। दास लावां का पाठ करेगा। पहली लाम का पाठ जदों संपूर्ण होएगा, अखीरलियां पंक्तियां दो वारी पढ़िया जाणगियां। आप जी ने पहली लाम दे संपूर्ण होण ते गुरु साहब जी दे सन्मुख मत्था टेकना है, ते फिर बड़े प्यार दे नाल मेरे सज्जे हथ आप जी ने प्यार सहित परिक्रमा करनी है, फिर मत्था टेक के अपने थां ते आके खलो जाना है। इसे तरह चार लावां दा पाठ होएगा। हर वारी आप जी ने मत्था टेक के ही परिक्रमा प्रारंभ करनी है, मत्था टेक के ही अपने स्थान ते खलो जाना है। नाल नाल गुरु के कीर्तनीय सिंह सतगुरां दी अमृत बाणी दा कीर्तन भी सरवण करवाउणगे। सो संगत नूं भी बेनती है कि आप जी ने इसे तरह ही प्यार नाल बैठ के सारी गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी दी मर्यादा दा आनंद मानना है। जे आप जी ने खड़े होकर के लावां सरवण करनियां हन ते मत्था टेके आप जी पहलां खड़े हो जाओ, फिर आपां लावां दा पाठ सरवण करिए जी। मत्था टेके आप जी खड़े होके लावां दा पाठ सरवण करो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ।

बख्शिश करके नवाजना। सतगुरु जीओ इस वक्त कृपा करो, पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शिश करो, हुक्म ते चलन दी समर्था बख्शिश करो। अखरवाद घाट भुल चुक मुआफ करनी, सरबत दे कार्ज रास करने, सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहेवंद होवन। गुरु नानक नाम चढ़ दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया भई अकाल की तबै चलायो, सब सिखन को हुक्म है। गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरां की जो प्रभ को

पसी दीदार दर्शन प्यासी दिन सरात चितवों अन दिन नीत खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संग मीत सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो।